0: लम्हे सूरत बन जाए, जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज़। रेडियो अमन 88.4 का रख, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: चाहतों के रंग, अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
2: It's 8 o'clock.
3: It's 8 o'clock.
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Juan Rang Aman.

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का मुकम्मल इलाज, हर दर्द का आसान हल।

0: Τώρα είμαστε μεζί, τάρτο που γεγιέζει από τα σαπάρσι δε τόσα έχω χαστηθεί.
1: Για να τίσε τα αρχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ έχω χαστηθεί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα μεζί μόχο κορτά νέσνελ ο μάλτι νέσνελ, καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίγε δαστάραγγε στάρα προβρή.
1: Βέλκολ τα αρχανά, τα κίλε βε χάρβαχτε μούτα χάν κούρσε κραλέ. Ο τσεκάρανα με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβη σε ρικρέτη, ο στούλ κούρβολα να χασούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरब रो उदार इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासूसियात दागा दी चे कपड़े सब युक्शुले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सारा खत्म करी जाखर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सपोई पवात लोसीना न खर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाय दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने গলছে আন্দ্রন লাকি গেট জানসেবে গালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেব সারদার তে মেলা বেশি।

लम्हे खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।

सो बिल्कुल इंटरनेट इंटरनेट भी बंद है और इंटरनेट के साथ साथ मोबाइल सिग्नल भी बिल्कुल बंद है और ये गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है।

बिल्कुल इंटरनेट, इंटरनेट के साथ साथ मोबाइल सिग्नल भी है, वो भी काम नहीं कर रहा। सो बिल्कुल गैर मुइन्ना मदद के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बंद कर दिया गया है और तकरीबन 24 घंटे हो गए अभी तक बहाल नहीं किया गया है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने घरों से दूर हैं, अपने इलाकों से दूर हैं और अपने रिश्तेदारों का हाल अहवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन उनका रابطہ नहीं हो पा रहा अपने घर वालों के साथ। तो उनको मैं ये बताता चलो कि इंटरनेट और इंटरनेट के साथ साथ मोबाइल सिग्नल बंद है, इसलिए आपका राबता अपने घर वालों के साथ नहीं हो रहा, ठीक है। सो अल्लाह करे कि सिग्नल जल्द बहाल हो जाए

चले कोई बात नहीं, जहाँ पे सिग्नल काम कर रहा है तो वहाँ से लोग कॉल कर सकते हैं इस प्रोग्राम में, और कॉल करने के लिए डायल कर सकते हैं अपने मोबाइल से हमारा लेड नाइन नंबर, और हमारा लेड नाइन नंबर है 09272912922, यानी कि पीटीसीएल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलें देखते हैं कि कहां कहां पे काम कर रहा है सिग्नल और कौन कॉल करता है आज के इस प्रोग्राम में। अच्छा जी, माशाल्लाह आपके कॉल आना शुरू हो चुके हैं। मैं तो समझ रहा था कि यहाँ पे बन्नो लक्की और इसके अलावा शिमाली वजीरिस्तान में काम नहीं कर रहा सिग्नल, लेकिन आपके कॉल आना शुरू हो चुके हैं। चलें उनसे पूछते हैं कि आपके इलाके में काम कर रहा है या नहीं।

सो सॉन्ग की जाने बढ़ते हैं और ये सॉन्ग जो है कौन सा सॉन्ग है चले सुनते हैं। ये सॉन्ग पश्तो सॉन्ग है, फरहान गुल की वॉइस में है ये।

तो बिल्कुल आप लोग कॉल कर सकते हैं 09272912 पर, लेकिन बहुत से इलाकों में काम नहीं कर रहा सिग्नल। बिल्कुल ढेर बदस ही कहना चखपल इलाके ना बल्लरी भी वही कहना चाहिए पता नहीं तो दस चल सवे दे सिग्नल मतलब कॉल न मिले बीजी ना खपल खपलवानों तक कॉल बोले न मिले बीजी नुबदा हो बरादा चे सिग्नल चे कुम दागा बनकड़ी शिवी दी और बिल्कुल तो उसको फकेशे मा रेडियो मन बिल्कुल तो से सरा दे और रेडियो मन बतोसा मालूमात देर के भी अच्छा जी। इसके अलावा आलमी मार्केट में हाम तेल की कीमतों में कमी आई है। आलमी मार्केट में हाम तेल की कीमतों में कमी सामने आई है जिसके बाद मकामी मार्केट में भी तेल की कीमतों में कमी का इम्कान है। आलमी मार्केट में हाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान देखा गया है जिसकी बड़ी वजूहात में मशी के उस्ता से तेल की बरामदात में इजाफा और G7 ममालिक की जानिब से हंगामी जहायर से हाम तेल और डीजल मार्केट में लाने का फैसला शामिल है। ताहम ईरान जंग के बायस हलीजी हत्ते में तेल की तनसीबात को मजीद नुकसान पहुंचाने के खदशात के सबब गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है।

चले प्रोग्राम में एक सॉन्ग शामिल करते हैं, लेकिन सॉन्ग शामिल करने से पहले बरतानवी फौजी अड्डे पर हमले का हादसा है। अमेरिका ने अपने B-1 बमबार तैयारे वापस बुला लिए हैं। अमेरिका ने बरतानवी फौजी अड्डे पर हमले के हादसे के पेश नजर बरतानिया के फेयरफोर्ड एयर डिफेंस से B-1 बमबार तैयारे वापस बुलाकर अपने अड्डों पर मुंतकिल कर दिए हैं। और ये पेशरफ्त एयरबेस पर हमलों की मनसूबाबंदी के शोबे में 5 अफराद की गिरफ्तारी के बाद सामने आई है। 27 सितंबर को पुलिस को एयरबेस के करीब 3 मशकूक गाड़ियों की इत्तला दे दी गई थी, जिसके बाद 5 अफराद को हिरासत में लिया गया, जो कि लंदन के रिहायशी और बरतानवी शहरी थे।

प्रोग्राम में तमाम सुनने वालों को एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं जो आज प्रोग्राम खामोशी से सुन रहे हैं, न कॉल कर सकते हैं न मैसेज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आज आपको मौका है कि प्रोग्राम खामोशी से सुने। बहुत से लोग कॉल करना चाहते हैं लेकिन कॉल नहीं कर सकते न मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा जी, क्रिकेट के हवाले से आपको ये बताता चलूं कि वर्ल्ड कप 2027 में पाकिस्तान का मुमकिन सुपर सेवन शेड्यूल सामने आया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी मैंस वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 में पाकिस्तान का मुमकिन सुपर सेवन राउंड का शेड्यूल सामने आ गया है। कौमी क्रिकेट टीम सुपर सेवन में क्वालिफाई करने की सूरत में अपना पहला मैच 26 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। तो जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले एक रोजा क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में 14 टीमें शिरकत करेगी और मजमूई तौर पर 57 मैचेस खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप का आगाज 2 अक्टूबर 2027 को नामीबिया के वेनहॉक में तीन टीमों पर मुश्तमिल सुपर सीरीज से होगा। इस मरहले की फातिह टीम ग्रुप मरहले में जगह बनाएगी। ग्रुप मरहले का बाकायदा आगाज 7 अक्टूबर को केपटाउन में होगा, जहां दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और भारत मद्दे मुकाबले होंगे।

चल अच्छा जी, यहाँ पे एक कैप्टन है, सो कैप्टन आप कैसे हैं? ठीक है। अच्छा जी सो बिल्कुल आईसीसी के मुताबिक ग्रुप मरहले में 12 टीमों को दो ग्रुप में तकसीम किया गया है। हर ग्रुप में 6-6 टीमें शामिल हैं। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और क्वालिफायर शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, इंग्लैंड, बांग्लादेश और क्वालिफायर शामिल हैं। सो बिल्कुल हर टीम अपने ग्रुप की दीगर टीमों के खिलाफ एक एक मैच खेलेगी। दोनों ग्रुप्स से टॉप तीन टीमें जो हैं, जबकि दोनों ग्रुप्स में चौथी पोजीशन हासिल करने वाली टीमों में से बेहतरीन टीम सुपर सेवन मरहले में पहुंचेगी। सो वर्ल्ड कप 2027 का पहला सेमीफाइनल 17 नवंबर को केपटॉन, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 18 नवंबर को तिशवाने में खेला जाएगा। और फाइनल 21 नवंबर 2027 को जोहानिसबर्ग में शेड्यूल है, जबकि जरूरत पड़ने पर 22 नवंबर रिजर्व डे भी होगा। चले टाइम खत्म हो चुका है, आप सबका बहुत शुक्रिया। और आज मैंने सिर्फ और सिर्फ दो कॉल प्रोग्राम में शामिल किए। एक कॉल रकीब हसन का था और दूसरा साबिर वजीर का था। बाकी लोगों से कॉल नहीं आए क्योंकि आज सिग्नल का मसला है और बहुत से लोगों ने आज खामोशी से प्रोग्राम सुना। चले नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज है मंडे और कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, अपनी दुआ में याद रखिएगा।

0: आवाज दे दस्ते से दजरो नो आवाज
1: गुरगुरे तोर तोर द उंडे ओ सर दमखे
0: रेडियो अमन नेटवर्क वन रंग अमन अमन
2: द आवाज दे द अमन द आवाज दे द पाकिस्तान द आवाज दे द रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
3: अल्लाह अल्लाह अल्लाह

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज़्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

0: रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम। म्यूजिक, मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे, मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन, मन का अमन।
1: रेडियो अमन 88.4 करते पदे पंदे बटे कुल कुल प्रोग्राम नवी तयावरा आओ जयावरम।
2: रेडियो अमन 88.4।

रेडियो अमन करक आपको दे रहा है एक खुशखबरी। अब आप अपने दिल की आवाज़ रेडियो अमन करक के साथ मैसेज के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। अब आप हर प्रोग्राम में फॉर्मेट के मुताबिक अपनी फरमाइशों और चाहतों का इजहार मैसेज के जरिए कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, वहां पर टाइप करें RAK, फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर अपना नाम लिखें, फिर अपने इलाके का नाम और अपना पैगाम लिखकर हमें 8583 यानी 8583 पर भेजें। आपका मैसेज हमारे प्रोग्राम की रौनक।

0: आवाज दिसते सुद्धा जुळून आवाज
1: गुरगुरे तोर तोर दगुंडे ओ सर तमखे
0: रेडिओ अमन नेटवर्क वन रंग अमन अमन.

हर झण आवाज रेडियामान आवाज रेडियामान 88.4 नेटवर्क मंगरवळूस तासु लपारा दगशान मलमती पर भ्रमना चितस्तासो होहेगी हर लम्हा हर जय हर वक्त मंगस तासु सरयो रेडियामान 88.4 करक आवाज दस्तासो आवाज जुआन रंग अमन अमन।

रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम। म्यूजिक, मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन।

0: कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतेहाब रेडियो अमन 88.4 करक।
1: ऐसा खो ओ सोचना मकवाई हग वक्त लाड़ो चुनौर तबसवाजे दले चुफ दी नई वाले तुम रखे सदा ओस दजान खुलो यानी मक्स पिनावलो दपारा इश्मा फार्मूला ब्यूटी क्रीम और इश्मा फार्मूला क्रीमी फेस वॉश रगले दे मखबा मो दुमर स्पिन की दुमर स्पिन चे जान ब पखपल न पे जने बस्ते का ना स्तासो ढेर तजुर्बे उकड़े पर ढेर क्रमोन दो कशवे ओस ब नोरे दो के नखरे जक छ मार्केट ता ओस इश्मा फार्मूला ब्यूटी क्रीम रगले दी इश्मा फार्मूला ब्यूटी क्रीम द मख रंग स्पिनवी और द मख न तेर सरी द गुना स्तर गिलांदे तोरे हल्के बशर्तिया सरल लड़कवी द टोल कमला सिर्फ और सिर्फ इश्मा फार्मूला ब्यूटी क्रीम के मौजूद दी ओस बदर तकोर के रोर द नवाच ए तोरे सप्लायर अला पलश का कस्तासो कोर सारा नजदी चरता हम न मिलेगी नक अपने हेल्पलाइन नंबर बने रफ्ता ओके 0342 311 2292।

सिफर 342 311 2292 इश्मा हरियो प्रोडक्ट दबरा नंबर लिख के दे व्हाट्सएप पे होम देखता सो मत पोर्ट से बंदी मैसेज केवल वाली प्रोग्राम के मैसेज रीड केवल वाली रीड जाता आसान तरीके देखा बस व्हाट्सएप पर लाड़ जवान नंबर पे यवर कई और मत ओ कई मैसेज डायरेक्ट बदले मैसेज रीड को बस सिंपल नंबर बानी होम ता सो मत मैसेज केवल शे 0342 311 2292 हां प्रोग्राम सुन बुरुस्त गुरु हां शाम द काल सर बुरुस्त गुरु अस्सलामुअलैकुम इनाम भाई कैसे हैं आप भाई वेलकम टू द शो इश्मा ब्यूटीफुल शो भाई मैं भी आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है इट्स बीन नाजिश फ्रॉम टाउन

हर ये भाई किस्मत का पता चली गई उमरा किसके लिए हमने तो अपना इश्मा हर्बल ऑयल की 34 कोपन वहीद भाई के साथ जमा किया हुआ है माशाल्लाह। अल्लाह जी उस्ताद हो लेगी हाँ, बाकी तो किस्मत खबर ही सईदा, अल्लाह जी उस्ताद हो लेगी सईदा इंशाल्लाह, पता किस्मत खबर ही थी चार चलेगी और खोयो ना यो पकम खाम खा बलेगी हाँ सईदा अल्लाह दी की जबरदस्त अच्छा किस्मत भी मुजाही दू लगी और पता किस्मत खबर ही शुक्र बोले इंसान बाकी इंसान बाकी कम दे के इस सब नशी के बोले और ज्यादा कूपन ही हुई और पजरगाओ या पसलाओ नो यो कूपन दास मख ले वर्ष इंसान अल्लाह से रावली मुदागुर किस्मत दे बाकी हाँ टोले खबर दी किस्मत दी हा संग इनाम लाला बीमार मरी मिटिक दवाई जर रुमे सयम इनाम लाला संग ही प्रोग्राम में उसान को हां खदियो कल खान शुक्र जदा करेंगे हां को सही था।

इज अ मैसेज कि हुआ खैर दे रहा है हां बिल्कुल धन्यवाद महा सही है बिल्कुल धन्यवाद कश्माला वाई सलामुन के विल गाइड इज मी कश्माला फ्रॉम चारसदा वाई नाम जाना जबरदस्त प्रोग्राम दे रवान देता ते मिसलान टोल दिन सलाम अस्सलाम वालेकुम प्लीज टपी वगन आलिया

बेलता जमाना हिस पजवंद के न पाते केदा, बेलता जमाना हिस पजवंद के न पाते केदा, छेतरा ना जुदाश वे नोर जमाना सब पाते केदा। आओ छे मड़ा मड़ा दे कतल द दर्द ना ये खबर वे का ना, मड़ा मड़ा दे कतल द दर्द ना ये खबर वे का ना, कसम दे छे पजड़ के में दनना स्ता बाणा पाते के दा। आओ दुमरा बद नसीबा मयन छे कलिमाए खुलके नवा, दुमरा बद नसीबा मयन छे कलिमाए खुलके नवा, छे पजन कदन के ये पशुन दोस्ताना मा पाते के दा।